0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटकी गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं सन जी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा यह छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तो फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

ऐस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी के कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदी विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया के विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु की कला देखिए राग सारंग विच, और आप जी चंगी तरह समझ के इसनों सुनोगे, आप जी के तन मन में ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु की बख्शिश और समय का यह निचोड़ होगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया होवे प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धीआं विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया होया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, या कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जाता, तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा। पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना, सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, एक गल वखरी है। सत संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा है ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणा ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा है। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हिड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने, इह कन्नां तों वी कमला, ए नासा तो भी कमला, अखा तो भी कमला, जीवा तो भी कमला, इंद्रिया सारिया तो कमला, काम तो भी कमला, एदा की हाल होगा। सतगुरु जिस दिन कृपा कर देने ना, उस दिन इन्हां दोषां तो बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तो बच जांदा है, दोष तो बच जांदा है, उस दिन दुख तो भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तो ही दोख तो ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहीदा। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तूं अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कण विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहीदा। ओ संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवां दर्स तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल। चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां।
तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, अज तेथों विछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाणगे। तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो। साध संगत से उपरीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, ए भी तेरी रहमत। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है, ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया, प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप। हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते, हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु। निमख ना विसरे हर चरण तुम्हारे, तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां, ओले ना होवां, भुल ना जावां तुहानू। नानक मांगे दान प्यारे, मैं तो यही दान मंगदा। निमख ना विसरे हर चरण तुम्हारे। बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी, सिखा ने वेखिया, कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है, कोई खुफिया जापदा है, जासूस लगदा है, जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है, मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है। बुकल कैसी मारी सू, पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई, किवें बुकल मारी सू? जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने, और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है। महाराज कहन लगे फड़ लो, सिखा ने जाके घेर लिया, फड़ लिया। रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया। साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू? मूंह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी, मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा, मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने, मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है। मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ, कौन है तू? कहन लगा जी पठान पुत्र। किवें आया सा इधर के महाराज एवें बिपता दा मारिया आ गया? सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ, इहदी पुछो इहदी बुकल विच की है। अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ। हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे, जो कुछ मैं अंदरों हां जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे, क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है। जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा, बल्कि वह तो इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं। जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है, बल्कि इथों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे, छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नू दसना चाहुंदा है, लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है, कोई किसे नू नहीं दसदा। सजना तो गहरे सजना नू, इथों तक पति पत्नी एक दूजे नू अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे। कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने, परदे वाली गल ही कोई नहीं। तरला मारन लगा, कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे। साहिब मुस्कुरा पए, साहिब जानदे ने दा परदा की है, परे तां आप परदे ढकण वाले ने, किहदा इह परदा ला के उहदा दोई जानी परदा कज्जण ते आए ने। कहिंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस, इहदी चादर ला दे। रोण लग पिया, सिखा ने एक नहीं सुनी, उन्होंने चादर ला दिती। ओदी बगल च निका जिहा मरियल जिहा कुत्ता पाया है, ओदी संगी ते उन्हें हथ दिता है। कुत्ते दीआं अखां बाहर ने, जवान बाहर नूं आई मर रहा, छड़ दिता कुत्ता थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी, सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों की गल है, बोलदा क्यों नहीं? कहन लगा महाराज कई दिनों का भुखा सा, देसों परदेस आ गया सा किरत करन वास्ते, इत्थे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है कि किसे गरीब नूं रोटी कित्थों मिलनी, इत्थे तां लुटेरा खा सकदा है, डाकू खा सकदा है, गरीब की कोई जा नहीं। या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने खा सकदे ने जिन्हां ने उस अफरा तफरी का कोई असर नहीं लिया, जिहड़े उस अफरा तफरी नूं मिटाउण वास्ते तुले होए ने, तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने। पातशाह मैं गरीब, उन्हां नूं फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी, ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उंज नेड़े नहीं लगण देंदे। मैनूं मुसलमान पठान नूं रोटी खाद्यां कई चिर हो गया है, मंगणा मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है,
जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी ये पावन बाणी कहती है लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तिरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छकदा तिरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिनों का भुखा का मारिया अज मैं ये फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, तो यह मरियल जहा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता था कितने नुकरे बह के इसे चब लव, इसे भुन के जिमें भी हो खा लवा तो अपने पेट की अग बुझा लव। साहब कह लगे लंगर छकाओ सोहने वस्त्र पुआ। कह लगा महाराज मैं थोड़ा दुश्मन हो सकना दोखी हो सकना, लंगर छका रहे हो तुहाडी बड़ी कृपा है क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए कहन लगे नहीं इत्थे भाई घनैये वर्गे बेअंत ने जिहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्होंने समय च टकिया च रसीने मिलते सन। साहबा ने रुपया रोज का ला दिता, कह लगे इन गुजरान मात्र रुपया रोज का दो। कह लगा साहब जी किस गल का तुम रुपया रोज मैं किस गल का बख्श दे। साहब कह लगे भुखा का मारे हैं गरीबी का मारे हैं देशों प्रदेश आया कमाने वास्ते तेरे बाल बच्चिया वास्ते तेरी किरत मात्र कि महाराज मैं करांगा की। साहब कह लगे जो तेरा जी करता है इतो कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर ली ना किया जाए ता भी कोई डर नहीं। गद गद हो गया गुरु किया रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड़िया गुरु का डर नहीं छड़िया सेवा च लग गया। इतनी सेवा की गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड़े। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया पैसे भी हो गए हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बरादरी वालिया ने तेरे बंदिया ने वेख लिया तेनू काफिर कहणगे तेनू दोषी करार देणगे। वह कहिंदा नहीं दोष निकल गए जीवन विचों जिसने खुदा नाल जोड़े है इन्ना परउपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया ते मैं इहनू छड के होर किहदे कोल चला जावां इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणां तों। साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर करदे, गुरु के सिख का की फर्ज बनता है। वह सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तो सरदारियां पाई ने भुखा मिटिया ने माण मिले है भरम मिटे ने दूई मिटी है हिरदे नू शांति प्राप्त हुई बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान भरम निकल जान बंदे नू चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

ते राय सोचन लग्या के कितना समा पा के कालू जी दे घर माता त्रिपता दे घर आ लाल पैदा होया सी, लेकिन आज लगदा है कि सब ने इसनु डस लिया। आ वही जाके कोई खबर करो ते आओ इस बच्चे नु वेखिए जीउंदा है कि कोई नहीं। ते जदो राय जी गुरु नानक दे कोल पहुंचे ते सब अपना फन सिकोड़ के वापस चला गया। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह उठ के बह गए। सात सगत बोलो श्री। ता राय ने सोचिया ए तां कोई खुदा दा नूर है जिसने मुख उते सर्प

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सा आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद करते हैं उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछिया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी राय जी जापद गुरु नानक हुण नहीं आवेगा आख्या इवें ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापद वह भी इतने आवेगी क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है 12 साल हो गए हैं गुरु नानक नू घरों गया ते घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे घरों ते कोई सुख स्नेहा ना होवे।

माता तृप्ता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता तृप्ता ने आख्या बेटा मैं तेरे स्पर्श तो कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया ता की वेखिया चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओह तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने एही कहिंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मूंह ते चपेड़ मार तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नूं मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठां बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रहा ते पिछों आवाज आई राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या सामने गुरु नानक खड़ोता है चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हैं।

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो समर्थ है

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उत्ते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उत्ते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उत्ते आपां सारे। उस माण विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साढ़े को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हरजी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल।

नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बाचित सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगणे आरा मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नूं लैके मनुख उपर नूं उठदा गुरु नूं प्यारा लगदा गुरु नूं पाउंदा है संसार नूं चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया मैं वारने जावा सतगुरु तो तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है उदा कोट आन कोट धनवाद उन्हें बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख का फर्ज है ओदा परोपकार साडे सिर ते ओदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शी है अपना प्यार बख्शी है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

सुरत ना श्रवणन बचन मधोकी है, अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो, मस्तक ना है।

मन मैं ना गुरमत, गुरमत मैं ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप।

हुण तू अपना सुभाव वेख। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शांद होण दा सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने भी कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनु ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा दा मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधर ही जावा। पर ये सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुना बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। मेरा सुभा ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभा वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्तना।

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना। मैनू तू अपना कम दे रहे ते मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता है एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होण करके कई बार निराशा दा

परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान, हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां, हर का नाम हृदय नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपां, मन करके जपां, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिन्हां जिन्हां ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपया है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साई दा नाम, आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों इक मिक हो जाएगी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता, हर हर जन दो एक हैं। बिप विचार किछ नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ये तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्शे, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साईं मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जिहड़ा अपने शरीर नूं अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे बाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझबानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साईं मियां मीर, समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बणिया जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू, जिस दी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है। ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तो अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज ने कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब निवाज, इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब निवाज किथे तुरे हो, आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं, किसे जरूरी काम नूं चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

0: कुछ
1: दूरी तक साहब जी नाल गईयां, चारे पासे संगतां दी अखां विच आंसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तो गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा, संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है तले, ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नूं सदिया, जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जन दे सिर विच पा। साध संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती कीती, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साईं मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरी नाम से, अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नूं, आ शरीर नूं क्या दुख देवेगा ए चंदू। साईं मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनूं हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तां साहब जी कहन लगे, चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जिहड़े नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे। जपजी साहब का जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नू आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख के पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर निभाया। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक दे मुख उजले गेती छट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

संभाले समनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सौ करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जुहारी स्वस्थ सु

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आ जा।

0: जेकर सूत कमनिया सब तह सूत को होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए
1: जित दाने उनके जिया बाजन कोए पहला पानी जी है जित हरिया सब कोए सूत को क्यों कर रखिए सूत में वर सोए नानक सूत

अमर धन रूप तनि सुत कन पै लाए तबारी खाए नानकंसा आदमी बदे जम पुर जाए सब सुत।

0: जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा,
2: आसरा उस दा आधार दा, मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
2: आप उधर ले पी।

0: जल पाया परमेश्वर पाया। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
1: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
0: हाँ बेटी।
1: बाबा जी असि ही मन में जल लग रहे हैं, थोड़ी कुल के हजारे यात्री आंदे जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
0: कादा पता?
1: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
0: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
1: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
0: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
2: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी।
1: कागू हंस करे,
0: कागू हंस करे, कागू हंस कर। ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
1: गुरु अमरदास?
0: हाँ बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
1: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
0: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
1: अच्छा बाबा जी, असि चलने।
0: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
3: उठ परी दायूज साज, सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई नानिवे सो सिर कपल उतार, जो सिर साई नानिवे सो सिर की देताए, उन्हें बैठ जलाए बालन संदे थाए, बालन संदे
4: थाए। ओ साहब जी की गल है पैना, तुसी ने गया दिता?
1: असि किस तरह जानते, सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
4: की पूछना सी?
1: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है, पर असी सारे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना दमड़ा।
4: और चलिए भैने, मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता, मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
1: फिर भी तुहाडी लोड़ा?
4: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है, तो हो भी चाहिए नहीं की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना, दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थड़े दसा जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
1: तन हो तुसी?
4: तन ते मैं नहीं पैना, तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है। और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया, उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हैं करो। आठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ये मजदूर नहीं हन, ये कोई फरिश्ते नहीं, ये कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरणा ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या ओए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने ओना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदिर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनू ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी हो।